0: 98.1 Hot FM, Georgetown. Wonderful land, beautiful people, sound moving to the next millennium. Hot FM.
1: Hey honey, we're just dancing, we're dancing the night away.
2: ये तो अपने कपड़े उतार रही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे, देखना,
3: यार.
2: Come on, Anna.